0: is Leica Radio across the Midlands.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: 02085748410
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410 एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: If I'm going out on my new paddleboard, the last thing I'm taking is my phone, right? Buoyancy aid, fine. But mobile? My whole life's on that phone. Why would I risk losing it in the... Coast Guard! Help!
4: Okay, help's on its way.
5: Grab my hand!
6: Phone. In a waterproof pouch. It's the first thing I pack now.
7: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please respect the water.
0: Leica Radio Network. Broadcasting across the UK with Asian stations.
8: अपने बिजनेस को UK के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें Leica Radio Sales on 0116-471-0697 या ईमेल करें sales@leicamedia.co.uk.
0: Soothing you through the night and early morning. This is Leica Radio Midlands.

मैं कहे न कोई गावे को तान होवे किसे तान गावे को दात जाने निशान गावे को गुण वडियाईया चार गावे को विद्या विखम विचार गावे को साज करे तनखे गावे को जी लै फिर दे गावे को जापे दिसे दूर गावे को वेखे हादरा दूर कथना कथिना आवे तोट कथ कत कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाई खाय हुक्मी हुक्म चलाए राव नानक विक सहवे परवा साचा साहेब साच ना।

ओ मैं विसर ना जाए जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले जे

लख दरियाओ कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कौन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भखाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए अखरी ना

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो सी।

राहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध।

अनाहत जुग जुग एक ओवेश आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखे सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एको वेश एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख

जोर जोर ना जीवन मरण है जोर, जोर ना राजमाल मंसोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती छित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथे पाए, नान गया जापै जाए, धर्म

0: की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंट इन अपोलो हैमरस्मिथ हमारे राम बुक योर टिकट्स नाउ विजिट www.eventimapolo.co.uk एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आर रेडियो
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
2: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
3: No more worries for me or you.
4: Southall Travel, at all protected.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
6: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: It's a dog walk. I do it every day at home. I don't need to plan it. Check the tide. Check my phone. Why do I need to take my...
8: Hey, boy!
9: Coast Guard, we're stuck.
10: Okay, help's on its way.
9: Hold on, mate.
11: Shoes tied. Phone.
12: Back before dark, love. Okay.
13: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please respect the water.
14: ZTV HD पर देखिए साहस और जज्बे की नई कहानी
15: जगदात्री
14: जिसमें माँ गौरी की सरलता बसती है
15: माला ले आना लाइया जी
14: वो वक्त आने पर महिषासुर मर्दिनी भी बन जाती है
16: टीम गेट रेडी फॉर द एक्शन
14: जिसके शांत स्वभाव में भी छिपा हो शेरनी का रूप वो है जगधात्री देखिए रोज रात 8:30 ZTV HD और Z5 पर अवेलेबल ऑन स्काई 707 स्काई ग्लास 714 वर्जन मीडिया 809 BT394
0: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Vadon, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want.
17: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी
18: हमारे पति हमको छोड़ दिए
17: गंगा जिसने अपने पति का साथ खो दिया
18: दिल तो टूट भी गया
17: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी
19: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती
17: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी गंगा माई की बेटियाँ हर शाम 7:00 ZTV HD पर अवेलेबल ऑन स्काई 707 स्काई ग्लास 714 वर्जन मीडिया 809 BT394
0: This is the largest commercial Asian radio network in the UK. This is Leica Radio across the Midlands.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Bollywood Flashback with Kajol.
2: Well, it was actually a confusing dialogue. A lot of people have messaged and said ki the movie is Nagin. Well, nahi, Nagin nahi hai. Sorry, maine kuch zyada hi difficult dialogue play kar diya. Let me play another dialogue and give you another opportunity to guess the movie. Coming up.
3: अचानक तेरा ख्याल आया, दुश्मन की ललकार का जवाब बहन के रिश्ते में बोलता नजर आया। मुझे उनकी उम्मीदों का गला घोटना है। एक हाथ मेरे पास है, दूसरा तुमसे मांगने आई हूँ। तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है पारू। बोल, तुझे अपनी इस छोटी बहन से क्या चाहिए? मुझे
2: actor's name was Paro. Think about it and message me.
0: WhatsApp Leica Radio Midlands now on 07404 793 719. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Bollywood Flashback with Kajol. Like
1: all right, so let me play one more dialogue from this song because some of you have got the answer. Yes, it's Rekha's voice, but the movie is not actually jo aap keh rahe hain. चलिए एक और डायलॉग एंड देन ऑफ कोर्स इसके बाद तो आपको थोड़ा सा हिंट हो ही जाना चाहिए कि विच इज दिस मूवी कमिंग अप.
2: अरे सेबो अभी तो तैयार नहीं हुई, उसकी तैयारी कभी खत्म हुई है क्या? सेबो मैं ले जाना है तो जल्दी से तैयार होके बाहर चलिया,
3: बस 5 मिनट में आई दीदी.
2: अरे उसको कह रही मुझे भी तो तैयार होना है,
4: तू आधा पौना घंटा आराम कर ले फिर तैयार होना शुरू कर, तब भी उसका हार श्रृंगार पूरा नहीं होगा.
2: छोड़ो ना माँ,
4: महंगे से महंगा कपड़ा पहन लेना, शहर जाके सिनेमा देख लेना और पका पकाया खा लेना, और तो काम आता ही नहीं उसे. माँ मैं सब कुछ सुन रही हूँ, इसीलिए मैं ऊंचा बोल रही हूँ. तो फिर मैं
1: ऑलराइट, सो ऑफ कोर्स यू हर्ड 3 voices, नाउ गेस द मूवी एंड मैसेज मी.
0: WhatsApp Leica Radio Midlands now on 07404 793 719.
5: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
6: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
5: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
6: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
5: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
6: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
5: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.

0: मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम फ्रॉम द मूवी वारिस इन द वोकल्स ऑफ लता मंगेशकर एंड मनमोहन सिंह. वन मोर ट्रैक दिस आवर एंड आई विल बी विद यू नेक्स्ट आवर विद सम अमेजिंग म्यूजिक फ्रॉम माय गानों का पिटारा ऑन लाइका गोल्ड.
1: दिस इज लाइका.

0: एक नई मोहब्बत की दास्तां, तुमसे तुम तक, हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: अबीरा, यहाँ से मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। क्या तुम मेरे साथ? ये फैसला मेरा था, भुगत तुम रही हो। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।
2: अगर हम साथ हैं
1: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे।
3: खुशियों को लगी वक्त की नजर, कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर?
4: ये रिश्ता क्या कहलाता है? मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस, अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803, EE 392 एंड अप टीवी, प्रेजेंटेड बाय travelup.com, पावर्ड बाय नैटको फूड्स।
5: Like a Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire with the UK's biggest Asian hits. Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station? Playing Bollywood classics 24/7 and with your favourite presenters live. Get the tune-in details at leicagold.com. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
6: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: लगी आग सावन जो फिर वो घड़ी है फ्रॉम द मूवी चांदनी इन द वोकल्स ऑफ सुरेश वाडकर. दिस मूवी वॉज रियली वेरी वेरी वेरी रोमांटिक डायरेक्टेड बाय यश चोपड़ा. ऑफकोर्स द मेन लीड वॉज श्रीदेवी एंड द मूवी वॉज टाइटल एंड यू नो द मूवी वॉज ऑन हर एंड ऋषि कपूर एंड दिस सॉन्ग वॉज एक्चुअली पिक्चराइज ऑन विनोद खन्ना एंड जूही चावला डिड अ कैमियो इन दिस मूवी. शी वॉज रियली रियली क्यूट एंड ऑफकोर्स इसके बाद शी बिकेम अ यश राज हीरोइन एज वेल.
1: लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट्स.
0: Well, Laika's latest episode, which is episode number 16, titled India Week Showcase, and it is hosted by Anuj Radia. Talking points are Laika Radio Network are official radio partners of the India Week from May 26th to May 31st.
1: Laika Extra is here. Kajal's Morning Mantra, presented by Mantra Holidays, your friendly holiday partner for UK, Europe and other destinations. For your memorable holidays according to your taste and budget, call 0203-773-633 to book your dream holiday.
2: Kajal's Morning Mantra,

बृहस्पतिवार वर्ष 2026 के मई महीने की 21 तारीख हो गई है आज। और वक्त वेल भाई ब्रिटिश घड़ियों में इस समय 10:05 हुए हैं और ये समय है हमारी आपकी मुलाकात का, संगीत की सौगात का। गोल्डन गीतों का खजाना खुल रहा है और भाई कौन कौन चल रहा है लूटने के लिए हमारे साथ। माय नेम इज रवि शर्मा, आई एम विद यू टिल 1:00 दिस आफ्टरनून। और बहनों भाइयों, आज के दिन कुछ चुने हुए और यूं कहिए कि भाई दर्द में सने हुए गीत जो है हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं, सारे नहीं कुछ एक, क्योंकि हमारी एक बहन है जिनका अगले हफ्ते जन्मदिन भी आ रहा है, मिस

0: एक सजा ही सही, बेरुखी हुस्न की एक अदा ही सही। तुझको पाऊं ना पाऊं मुकद्दर मेरा, तुझको पाने की लब पे दुआ ही सही। तेरी जुल्फों की छांव मिले ना मिले, तेरे कूचे की ठंडी हवा ही सही। कैसे भूलूंगा मासूम चेहरा तेरा, बेवफा है तो क्या, बेवफा है तो क्या, बेवफा ही सही।
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Leica Radio, part of the largest Asian commercial radio network in the UK.

0: लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे, आजा सरे बाजार तेरा प्यार बिक रहा है। और इससे पहले भाई वो बेवफा के लिए बेवफाई की शिकायत थी उस गीत में, शायरी के साथ जोड़कर हमने उसे भाई प्रस्तुत किया। तो दो गीत बैक टू बैक संगीत के तहत आपने सुन लिए हैं, क्या से क्या हो गया बेवफा, दैट वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म गाइड, एंड दिस सॉन्ग यू वर जस्ट लिसनिंग टू लता जी की आवाज में, ये था अली बाबा और 40 चोर फिल्म से। इस टाइटल से भी वही कई फिल्में बनी हैं। और अब बता दूं आपको कि करीब 10:30 बजे आप सुनेंगे आज के प्रमुख समाचार, 11 बजे की खबरों के बाद होगा आज का विचार यानी चिंतन, और इसके अलावा भाई गीत संगीत और कुछ काम की बातें और कुछ अटपटी चटपटी बातें भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हाँ, शायरी के साथ कुछ एक दर्द भरे गीत शोभा बनेंगे आज के प्रोग्राम के, क्योंकि आज बृहस्पतिवार है और मई महीने की 21 तारीख है, याद है भारत में आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी जा रही है, आज उनकी पुण्यतिथि है। भाई एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान लिट्टे के द्वारा जो है उनकी हत्या की गई थी 21 मई, एंड आई थिंक दैट वाज 1991। चर्चा करेंगे। और भाई आज किसका जन्मदिन है, किसकी पुण्यतिथि है, उनका भी जिक्र होगा। तो 1 बजे तक जुड़े रहिएगा मेरे साथ। माय नेम इज रवि शर्मा एंड लेट मी टेल यू द पाउंड रेट नाउ।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: और साहब एक पाउंड का मूल्य दे रहे हैं SBI वाले इस समय 129.15 रुपीस। यस, योर 1 pound कैन गेट यू अप टू 129.15 रुपीस। भाई यहाँ से जो पैसे भेजते हैं अपनों को तो खुश हो रहेंगे कि भाई काफ़ी रुपए मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, अच्छा रेट मिल रहा है। लेकिन वहाँ भारत में इस बात को लेकर निराशा है कि रुपया सस्ता हो रहा है, इम्पोर्ट महंगा होता है, बाहर से चीज़ें मंगाने में उन्हें दिक्कत होती है। लेकिन साहब अर्थव्यवस्था भारत की हालांकि मजबूत होती जा रही है, ऐसे में रुपये को महंगा होना चाहिए पर वो सस्ता होता जा रहा है वहाँ पर। भाई ये इकोनॉमी वाले जानते हैं कि इस तरह की बातें होती हैं। तो लेट मी टेल यू अनदर थिंग, सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन 75 pound वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 pound। और इसके अलावा ऑल्सो 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन यू सेंडिंग ओवर 2000 pound, बट रिमेंबर TNC अप्लाइज।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is Leica Radio.
2: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
4: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
4: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCNPRA.
0: Weddings, celebrations, corporate events, Ragas and sab kuch efficiently handle karte hain. Perfect location dhoondne se lekar incredible themes design karne tak. World class cuisine se har choti badi requirement tak manage karte hain. 30 saal se zyada ka experience har event ko khas banaye. Foran ka phone milaye 0200-8839-0880 or visit ragasun.com. Location, design, management ya catering. Ragasun.

0: What a song. भाई ओपी नैयर ने कुछ हटकर धुने बनाती थी और अपने भाई म्यूजिशियंस में वो ढोलक प्लेयर का भी इस्तेमाल करते थे। रिदम में तबला होता है, यानी वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, कोंगो बोंगो टाइप, लेकिन ये ढोलक की थाप सुनाई पड़ती है।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: जी हाँ बहन भाइयों, आप लाइका गोल्ड के गोल्डन गीतों का मजा ले रहे हैं और अब हम भाई खबरों की ओर मुड़ने से पहले यहाँ ब्रिटेन में तो जो एक अच्छी खबर है स्टूडेंट्स के लिए कि भाई छुट्टियों के दौरान उन्हें फ्री ट्रैवल जो है वो उपलब्ध रहेगी, लेकिन एक और खबर है कि नंबर ऑफ पीपल क्लेमिंग असाइलम ड्रॉप्स बाई 12% कंपेयर टू लास्ट ईयर। कहते हैं कि 2021 के बाद ये सबसे ज्यादा ड्रॉप है, बड़ी ड्रॉप है। UK net migration falls to the lowest level since 2021. ये एक खबर और जो विचलित करने वाली है कि गलती से सम्राट की मृत्यु का ऐलान कर दिया गया रेडियो स्टेशन पर। रेडियो स्टेशन पर ऐसी गलतियां होती हैं, कुछ गलतियां तो भाई एकदम पकड़ी जाती हैं, कुछ गलतियां जो है लोग इग्नोर कर जाते हैं, सुन लेते हैं पर ध्यान नहीं देते। और ये तो बहुत बड़ी गलती है कि एसेक्स के एक रेडियो स्टेशन ने, कैरोलाइन रेडियो ने अब अपोलॉजी की है, माफ़ी मांगी है भाई। वो इतनी बड़ी गंभीर गलती कि सम्राट हिज एक्सीलेंसी महामहिम किंग्स चार्ल्स की जो है उन्होंने मृत्यु की घोषणा कर दी। और भाई आप जानते हैं इसके भी एक प्रोटोकॉल होता है कि वो सैड म्यूजिक के साथ और ऊपर से परमिशन होती है, पहली अनाउंसमेंट तो वहाँ से होती है पहले से, लेकिन साहब उन्होंने कर तो दी, उसके बाद हंगामा हो गया, तूफान आ गया, तो बाद में उन्होंने माफ़ी मांग ली। वैसे भारत में भी ऐसी गलतियाँ हुई थी भाई, एक बार तो एक गलती मुझसे भी हुई थी, पर वो शुरुआती दौर था 1996 का, जब मैं रेडियो पर था और एक मैंने एक गंभीर गलती की थी, लेकिन वो अनाउंसमेंट से जुड़ी हुई नहीं थी, वो टाइम की गलती थी कि इस ट्रांसमिशन को समय से पहले बंद कर करके बाय बाय कर दिया था, जबकि अभी समय बचा था प्रोग्राम का। गलती सुधार ली गई, दोबारा से ट्रांसमिशन शुरू किया और फिर क्षमा मांग के मैंने प्रोग्राम को कंप्लीट किया। लेकिन साहब ये गलतियां होती हैं रेडियो स्टेशन में, पर जब किसी की मृत्यु का ऐलान किया जाए, घोषणा की जाए, तो लोग कहते हैं कि इससे उनकी उम्र बढ़ जाती है। मेरा ख्याल है कि भारत में एक ये गलती हुई थी शायद पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी के विषय में, और नहीं तो एक वो होते थे क्रांतिकारी नेता बिहार के भाई, जिन्होंने सरकार पलटवा दी थी, सारा बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, जयप्रकाश नारायण, आप ये नाम भूले नहीं होंगे, उनकी डेथ अनाउंसमेंट हो गई थी ऑल इंडिया रेडियो पर, और उसके बाद सैड म्यूजिक भी चल रहा था और भाई एक तरह से ऐसी लहर आ गई थी। बाद में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पार्लियामेंट में बयान देके कहा कि ये झूठी खबर थी, और कहते हैं कि इससे मुझे पूरा विश्वास है कि जयप्रकाश नारायण जी की उम्र लंबी होगी, मानते हैं ऐसी। लेकिन भाई आज के समाचारों में इस खबर के अलावा और क्या क्या है, लेट्स फाइंड आउट इन द न्यूज। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। भारत से आने वाली खबरों में झारखंड की राजधानी रांची में आज प्रतिबंधित यानी बैंड ऑर्गेनाइजेशन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के 27 मेंबर्स ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है, आत्मसमर्पण कर दिया है। बताया जा रहा है कि इन सभी ने झारखंड पुलिस, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ के सीनियर अफसरों की मौजूदगी में हथियार डाल दिए। ये सरेंडर झारखंड पुलिस के ऑपरेशन नवजीवन के तहत हुआ। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले कई मामलों में वांछित थे, उनकी तलाश थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। अब आत्मसमर्पण करने वाले 27 माओवादियों के पुनर्वास में और दोबारा से बसाने में सरकार पूरी मदद करेगी। काकरोच जनता पार्टी के बारे में सुना आपने? भाई एक पार्टी रातों रात इतनी फेमस हो गई, उसके फॉलोवर्स की इतनी तादाद बहुत बढ़ गई, चार दिन के अंदर कॉकरोच पार्टी के इंस्टा हैंडल पर फॉलोअर्स की तादाद 1.18 करोड़ को पार कर गई। इस संख्या को इंटरनेट पर इसके नाम से वेबसाइट भी बन चुकी है। अभी इसमें ऐसी क्या खास बात है भाई, इसके बारे में कोई जो है टिप्पणी कर दी भारत के चीफ जस्टिस ने, जैसा सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने, सीजीआई ने, और उसके बाद भाई इस पर जो चर्चा बढ़ी है और अब तो कहते हैं कि काकरोच पार्टी का जो वो क्या कहते हैं इसका, वो बंद कर दिया गया है उनके कैंपेन का एक्स हैंडल जो है भारत में, अब उस पर पाबंदी लगा दी गई है। तमिलनाडु में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। 1967 के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी सरकार में शामिल हुई है वहां तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री नव निर्वाचित जोसेफ विजय ने आज अपने मंत्रिमंडल को एक्सपेंड किया। अपनी कैबिनेट में उन्होंने 23 नए मंत्रियों को शामिल किया है और इनमें से कांग्रेस के भी 2 मंत्री शामिल हैं। यूनाइटेड नेशंस में ईरान की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, उसने ट्रंप की धमकियों पर कार्रवाई की मांग की है। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि अमीर सईद इरवानी ने मांग की है कि सिक्योरिटी काउंसिल को ईरान के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति की बार बार और रोजाना दी जाने वाली धमकियों पर चुप नहीं रहना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। बार बार कहते हैं कि अगर उन्होंने नहीं माना तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम बहुत बड़ा अटैक करेंगे। ऐसी कई बार जो है स्टेटमेंट्स अमेरिकी प्रेसिडेंट की आ चुकी हैं और इन धमकियों पर चुप्पी की आलोचना करते हुए ट्रंप ईरान पर बार बार बमबारी करने और पाषाण युग में वापस भेजने की जो धमकियां देती रही हैं उनका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ईरान के लिहाज से ये एक बेहद खतरनाक धमकी है जो वो बार बार देते रहे हैं। भारत से आने वाली खबरों में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, भाई ये वो दिल्ली NCR है जो दिल्ली के आसपास का इलाका है, उसमें हरियाणा के भी कुछ शहर आते हैं, तो वहां उस क्षेत्र में NCR में टैक्सी यूनियन की 3 दिन की हड़ताल आज से शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि ट्रक मालिकों और बस मालिकों और टैक्सी और मैक्सी कैब ऑपरेटर्स के संगठन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने मंगलवार को बैठकर की इस हड़ताल का फैसला किया था। दिल्ली सरकार ने कमर्शियल गाड़ियों पर जो एनवायरमेंटल नुकसान की भरपाई के लिए जो टैक्स बढ़ाया गया है उस बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग करते हुए उन्होंने हड़ताल का फैसला किया है। आज से यह हड़ताल शुरू हो गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा है कि उनके देश ने हमेशा वादों का सम्मान किया है, इज्जत की है और युद्ध टालने के लिए हर रास्ता अपनाने की कोशिश भी की है। ईरान की ओर से सभी रास्ते अब भी खुले हैं, वो जंग नहीं चाहते। यानी बातचीत के रास्ते खुलने का मतलब है, बातचीत का मतलब आत्मसमर्पण नहीं होता। ईरान का इस्लामी गणराज्य गरिमा और देश के अधिकारों की रक्षा की बातचीत करता रहता है। किसी भी हालत में वो जनता और देश के जो कानूनी अधिकार हैं उनसे पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने लिखा कि हम तर्क और पूरी ताकत के साथ आखिर तक जनता की सेवा करेंगे और ईरान के इंटरेस्ट और उसके सम्मान की स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में अमेरिकी प्रेसिडेंट का बयान आया है, कह रहे हैं मैं जो कहूंगा वो वही करेंगे। पत्रकारों ने पूछा था कि क्या इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के से ईरान पर हमले और आगे की स्ट्रेटेजी को लेकर आपकी कोई बात हुई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा वो वही करेंगे जो मैं कहूंगा, वो बहुत अच्छे इंसान है, मेरी राय में इसराइल में उनके साथ सही बर्ताव नहीं हो रहा है। इस समय इसराइल में मेरी लोकप्रियता, मेरी पॉपुलैरिटी 99% है, मैं वहां प्रधानमंत्री पद का चुनाव भी लड़ सकता हूं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू के बीच ईरान को लेकर के लंबी बातचीत हुई है और उस समय अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन कम करने और बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिशें चल रही थी, जबकि इसराइल ईरान के खिलाफ सख्त रुख बनाए हुए है। तेल और गैस की कमी की खबरों पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एक बयान आया है। देश की प्रमुख तेल कंपनियों में से एक, भारत की ये मेन पेट्रोलियम कंपनी है, इन्होंने उन रिपोर्ट्स को खारिज किया है कि भारत में तेल और गैस की कमी है। उन्होंने कहा कि भारत में इसके रिटेल नेटवर्क में सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, ऑपरेशन नॉर्मल है और कंपनी का काम बगैर किसी अड़चन के चल रहा है, किसी चीज की गैस की या तेल की कोई कमी नहीं है। अमेरिका ने क्यूबा के नेता राउल कास्त्रो पर 1996 में उसके दो हवाई जहाजों को गिराने और अमेरिकी नागरिकों की हत्या की साजिश रचने समेत कई गंभीर इल्जाम लगाए हैं। आपको बता दें कि उस घटना में 4 लोगों की मौत हुई थी जिनमें 3 अमेरिकी नागरिक शामिल थे। 94 साल के कास्त्रो उस समय क्यूबा की सेना के प्रमुख थे, आर्मी चीफ थे। हवाई जहाज गिराने की इस घटना की इंटरनेशनल लेवल पर कड़ी आलोचना हुई थी। वेल, ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: ये है लाइका रेडियो टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।
0: जर्नलिज्म की दुनिया से निकलकर अब लौट आइए मनोरंजन की दुनिया में। मुड़ते हैं संगीत की ओर।
4: बंद कर रेडियो।
5: नहीं करू किधु ने।
4: अरे कौचू बंद कर, मैं टीवी जोऊ छे।
5: तमारे जे जोऊ ते जुओ, समझा ने। जहाँ सुधी रवि शर्मा ने न सांभळू ने त्यां सुधी रेडियो बंद नहीं करू, नहीं करू, नहीं करू।
4: एटले
5: शु? वार छोड़ीस, घर छोड़ीस, पर रवि शर्मा ने नहीं छोड़ू। ना, एटले रेडियो मां रवि शर्मा ने सांभळवानू नहीं छोड़ू।

0: Tasty Track of the Hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
2: और साउथ हॉल ट्रेवल का एक संदेश भाई नोट कर लीजिए, वो कह रहे हैं कि मेक दिस समर मेमोरेबल विद साउथ हॉल ट्रेवल, एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड फ्लाइट्स, होटल्स एंड एटोल प्रोटेक्शन। भाई 40 वर्षों से भी ज्यादा देर तक के भाई वो साथी हैं हमारे, भरोसेमंद हैं, प्रतिष्ठित हैं ये साउथ हॉल ट्रेवल वाले, और साथ में भाई ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड के विनर्स भी हैं। विजिट साउथ हॉल ट्रेवल और कॉल 0208 574 8410।

0: ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
1: और साहब कुछ गीतों के लिए बड़ी प्रशंसा आ रही है। हमारे एजाज भाई चैशम में कह रहे हैं कि कजरा मोहब्बत वाला बहुत बढ़िया था। वाल शमशाद बेगम और आशा जी की आवाजें सुनी, दिल को बड़ा अच्छा लगा। मानसी भी यही कह रही है, मानसी कह रही है लवली ड्यूट, एब्सोल्यूटली लव शमशाद बेगम, उनकी आवाज जो है कुछ हटके है। भाई मैं ये गीत आप दोनों के नाम करता हूँ, एजाज भाई आपके भी और मानसी आपके भी। झगड़ा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा बांट लेना, थोड़ा थोड़ा उनके नाम, थोड़ा आपके नाम, एंजॉय कीजिए। और भाई ये गीत तो उनके भी नाम कर दो जिनका जन्मदिन है। जन्मदिन किसका है? जन्मदिन रंजन की बेटी का है, नीलम का। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू नीलम। रंजन जी हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, आपकी बेटी को जन्मदिन धूमधाम से मनाइए। बच जाए तो केक भिजवाइए, वरना रखिए खाइए। और हमारी बहन पिंकी सुन रही है, देर के बाद संदेश मिला है। पिंकी, पिंकी नायक भाई, पिंकी थैंक यू वेरी मच। संदेश भले ही भाई रोज नहीं भेजती है लेकिन सुनती कहती हैं बहुत। और पिंकी आप संजय आनंद को भी हमारी ओर से बधाई दीजिएगा, शुभकामनाएं दीजिएगा। उनका जो मेफेयर में रेस्टोरेंट रेनोवेशन के बाद 29 तारीख को फिर से खुल रहा है, पूरी धूमधाम और पूरी आन बान और शान के साथ हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच मैडहूस भाई, अब तो बहुत जगह है। संजय आनंद को बधाई और पिंकी आपके माध्यम से हमने पहुंचाई। 10:46 हो गए हैं ब्रिटिश घड़ियों में। कुछ एक संदेशों के बाद लौटते हैं।
0: Like a radio. The wait is now over. The king of melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
2: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
0: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
2: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
0: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: Mum, I'm outside.
4: Yes, literally just landed.
5: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
4: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
5: And you didn't pay those massive roaming charges?
4: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
6: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
7: 105 शोज पूरा कर्या पछी हवे लेस्टर मा आवी रह्यू छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी नाटक।
8: जेज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रे जो हसबंड जी,
7: लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनो फुल डोज। 28 जून पीपल सेंटर लेस्टर मा बे शानदार शोज बपोरे 8 वागे अने सांजे 7 वागे। टिकट्स बुकिंग माटे कॉल करो मिस्टर B07860280655, मुंबई सैंडविच स्टेशन 07834832249 अथवा eventbrite.co.uk।
9: Location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
10: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
11: Har crunchy bite mein ek khas ethnic swaad. Har fryam shape mein hai wo bachpan ki yaad.
12: Snack time hunger ko banaye aur be tasty with Jaymin's Fryams in different shapes and yummiest flavors like lemon chili mint, manchurian, masala, peri peri aur shizwan with best quality and same ethnic taste.
11: Jaymin Fryams, available at your nearest ethnic grocery stores.
13: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
14: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
15: When you notice something wrong, it tends to grow and eventually take over, to the point you can't really think of anything else. If something in your body doesn't feel right, the thought it could be cancer can play on your mind. Tests could put your mind at rest. Finding out sooner is always better. Your NHS wants to see you. Contact your GP practice.
16: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में.
17: This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station, playing Bollywood classics 24/7 and with your favourite presenters live? Get the tune-in details at leicagold.com.

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में चिंतन के साथ। मेरा नाम रवि शर्मा है और बहनों भाइयों, मैं ये प्रोग्राम लेकर आपकी सेवा में दोपहर बाद 1 बजे तक हाजिर हूँ। इस समय ब्रिटिश घड़ियों में 11:04 हुए हैं। वक्त चिंतन का हो चला है। थॉट फॉर द डे, आज का विचार, और आज के विचार के साथ भाई एक संदेश भी है। आज का विचार हमें भेजा है रिचिंग पार्क से। ये रिचिंग पार्क लैंगली में है, स्लॉ के पास भाई। वहां से हमें हैरी दास ने ये संदेश भेजा है। कहते हैं, चिंतन प्रोग्राम में शामिल करते हुए हमारी ओर से सभी संगत के श्रद्धालुओं को ये सूचना दे दीजिएगा कि परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय संत त्रिलोचन दास जी महाराज पधार रहे हैं। शाम 5 बजे वो दर्शन दरबार रिचिंग पार्क में पहुंच जाएंगे, तो दर्शन के लिए पहुंचे। दर्शन, सत्संग, भजन, कीर्तन और लंगर, सारी व्यवस्था रहेगी। तो हैरी भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और परम पूज्य महाराज जी को हमारी ओर से भी स्वागतम। और आज के चिंतन के लिए वो कहते हैं कि मैंने महाराज जी के ही व्याख्यानों से लिया है आज का विचार। थॉट फॉर द डे, जीने की कला सिखाते हैं, जिंदगी की राह दिखाते हैं संत महापुरुष। और भाई आज हैरी कहते हैं कि एक छोटा बच्चा अपने अंकल की मुक्केबाजी की प्रतियोगिता देखने के लिए पहुंचा। अब साहब, रिंग के चारों तरफ दर्शक बैठे थे, रिंग में 2 मुक्केबाज उतरे, बच्चे का अंकल जो है वो मुकाबले में उतरा, तो

तो मुक्केबाज बॉक्सर और बच्चे के अंकल जो है दूसरे मुकाबले में सामने वाले के प्रहार से लड़खड़ाए और गिर पड़े। गिरते ही बच्चा रोने लगा, अंकल हार गए, अंकल हार गए। तो बच्चे के पापा ने समझाया, नहीं बेटा, अंकल हारे नहीं हैं, अंकल गिरे हैं। गिरने से हार नहीं होती, नोट कर लीजिए बहन भाइयों, गिरने से हार नहीं होती, गिर के ना उठने से हार होती है। गिरना पॉसिबल है रिंग में, लेकिन जो उठने से इनकार कर दे, ही इज नॉक्ड आउट, वो पराजित है। हारा हुआ वो है जो हथियार डाल दे, जो हौसला छोड़ दे। गिरना, संभलना, फिर उठना हार की निशानी नहीं है, ये तो एक प्रोसेस है भरो भाइयों। हम भी जिंदगी के सफर में कई बार गिरते हैं, उठते हैं, लेकिन जब तक हम उठते रहेंगे, हम जीत की ओर बढ़ते रहेंगे। गिरना हार की निशानी नहीं है, गिरकर ना उठना डेफिनेटली हार की निशानी है।

सुना आपने, तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं, क्योंकि तू आदमी है, अवतार नहीं, कोई ईश्वर नहीं, शक्ति नहीं है, और तू अजर अमर अखंड नहीं है, उस परमात्मा का अंश है तू, परमात्मा नहीं। तो गिरते हैं शाह सवार ही मैदाने जंग में, गिरना हार की निशानी नहीं है, गिर के ना उठना या उठने की कोशिश भी ना करना डेफिनेटली हार की निशानी है। जिंदगी में ऐसे पड़ाव आएंगे, ऐसे मौके आएंगे जब गिर जाते हैं लोग, लेकिन गिर के जब संभल जाते हैं, उठ जाते हैं, तो फिर जीत की ओर बढ़ जाते हैं। आज का चिंतन, आज का विचार, जिसके लिए आलेख हमें हरिदास ने भिजवाया था रीचिंग स्पार्क से, ये स्लाव में है। और जहां भाई आज संत त्रिलोचन दास जी महाराज पधार रहे हैं और बहुत सारे लोगों को इंतजार है उनके दर्शन, उनके प्रवचन के लिए, तो भाई शाम को आज वहाँ सत्संग है। हमारी ओर से भी हरि भाई महाराज जी को प्रणाम कहिएगा। और आपने लिखा है कि

0: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से न्यायमूर्ति जस्टिस विजय कुमार शुक्ला जी भी पधार रहे हैं। भाई विजय शुक्ला जी का नाम चर्चा में भारत में और विदेशों में भी उस बात को लेकर के है जो अभी इसी महीने कुछ दिन पहले फैसला आया है हाई कोर्ट से। फैसला आया है धार की भोजशाला के विषय में। भोजशाला विवाद का विषय थी, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी अपनी न्याय प्रक्रिया में भाई उन फैसला सुना करके शुक्ला जी ने जो किया है उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं और उनका भी स्वागत करेंगे। भाई वो आज पधार रहे हैं और महाराज जी का भी। हरिदास जी हमारी ओर से बहुत बहुत मंगल कामनाएं इस 5 दिवसीय सत्संग के लिए जो 21, 22, 23, 24 और 25 को हो रहा है। रीचिंग स्पार्क आइवर स्लाव में। बहनों भाइयों, चिंतन आपने सुना, गीत भी सुना, बस ये बात याद रखिएगा, तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं, क्योंकि तू आदमी है अवतार नहीं। आज का चिंतन, आज का विचार कहता है कि गिरते ही उठने से इनकार मत कीजिएगा, उठने की कोशिश कीजिएगा, उठिएगा और फिर सफर शुरू कीजिएगा।
1: चिंतन
0: चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम का हिस्सा बनता है। आज का चिंतन अब समाप्त होता है।
1: चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: और भाई भाइयों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके का संदेश आपके नाम कर रहे हैं कि इफ़ यू वांट टू सेंड मनी, ये सही अवसर है, क्योंकि भाई जून के आखिर तक एक स्पेशल ऑफर भी जुड़ गई है इस भाई संदेश में। 1 पाउंड के बदले आज वो दे रहे हैं, इस समय जो रेट चल रहा है 129.15 इंडियन रुपीज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये संदेश ये भी याद दिला रहा है आपको कि सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून। क्या खास बात है कि यू कुड विन ए 75 pounds वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 pounds, ऑल्सो ए 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
3: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
4: No more worries for me or
5: Southall Travel, at all protected.
6: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
8: Asiana, in association with ZTV and Leica Radio, brings you the Asiana Lifestyle Show on Sunday the 31st of May at the new Bingley Hall in Birmingham,
9: where weddings, fashion, jewellery, beauty and lifestyle come to life under one roof.
8: Meet the UK's top brands, discover exclusive offers and get ready to be inspired and entertained in style.
9: Register now for free tickets at asianalifestyleshow.com.
8: For sponsorship and details, call 07803 633 926.
10: Frankie Goes to Bollywood is back. Dive into a breathtakingly colourful journey of romance, epic songs, spectacular dancing with brand new songs by Bollywood hitmaker Hari Anand. This show-stopping musical celebrates ambition, transformation and the power of owning your own story. From the producers of Britain's Got Bhangra and Surinderella, Frankie Pinky Goes to Bollywood comes to the Oxford Playhouse, 2nd to the 6th of June. For tickets and more info, click oxfordplayhouse.com. Radio partner, Laika Radio.
11: This Eid al-Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money, send joy. Western Union makes money from currency exchange.
12: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
13: ये है लाइका गोल्ड

0: listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: भाई बैक टू बैक संगीत के तहत दो गीत हमने आपको सुनवाए और अब पहले वो कल्लू कवाल की कव्वाली कैसी लगी आपको एक अरसे बाद सुनी होगी और उसके बाद भाई रवि साहब की बनाई धुन पर लता जी की आवाज जमी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी और अब जरा ये सुनिए और बताइए ये कैसा गीत है

0: Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: और लाइका एक्स्ट्रा पर भाई जो हमारा नया एपिसोड है पॉडकास्ट का, नोट कर लीजिए, इंडिया वीक शोकेस होस्टेड बाय अनुज रेडिया अब तैयार है आपकी वही द्वारा देखे जाने के लिए। वेल, लाइका रेडियो नेटवर्क आर ऑफिशियली रेडियो पार्टनर्स ऑफ इंडिया वीक 26 मई से और 31 मई तक ये चलेगा। और इस बीच आप जरूर देखिएगा हमारा एपिसोड 16 जो इंडिया शोकेस पर है। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं आपको कि हमारे पुराने एपिसोड्स भी अवेलेबल हैं हमारे पॉडकास्ट पर, और उसमें भाई लाइका एक्स्ट्रा जो है ना उसमें उसकी अवेलेबिलिटी नोट कीजिए, स्पॉटिफाई पर हैं हम, यूट्यूब पर हैं, अमेजन, एप्पल और दूसरे जो बड़े बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं सब पर उपलब्ध हैं लाइका एक्स्ट्रा, जरूर देखिएगा।
0: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is Leica Radio.
4: The timeless soul of Qawwali returns to the stage.
5: Presenting Bismil Ki Mehfil UK Tour 2026 live in London.
4: Featuring Bismil, India's biggest Sufi sensation.
5: Known for his soul-stirring voice, electrifying live performances and the modern revival of the Mehfil experience.
4: Join us for a mesmerizing night of soulful music and the magic of a true Mehfil.
5: On Sunday the 7th of June at Hackney Empire.
4: Book your tickets now at Zeppelin Entertainment.com. Exclusive radio partner, Leica Radio.

0: sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: और रेट हम बता देते हैं भाई LemFi की, अगर आप अपनों को पैसे भेजना चाहें तो एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 129.27 रुपीस फॉर वन पाउंड, पाकिस्तानी करेंसी में 373.95 रुपीस, श्रीलंकन रुपए दे रहे हैं 462.96, बांग्लादेशी टके 164.99 एंड अफगानी 84.44.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Manoranjan with Ravi Sharma. LIKA Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
2: The gold is sold at the rate of 108.72 pounds.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. Leica Radio. India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
2: पहले कल के मैच का जिक्र करें भाई, टाटा आईपीएल 2026 के मुकाबले अब दूसरे दौर में पहुंच गए हैं, पता लगेगा कि प्लेऑफ में कौन कौन सी टीमें शामिल रहेंगी। कल का मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच था भाई, कोलकाता नाइट राइडर्स वालों को होम ग्राउंड का फायदा तो मिला, सपोर्ट मिली, लेकिन मुंबई इंडियंस की शुरुआत तो बहुत ही लड़खड़ाती हुई हुई, लगता ही नहीं था कि ये वो टीम है जिसमें रोहित शर्मा खेलते हैं, कल भाई चले नहीं। लेकिन आपको बता दें कि कल का मैच 4 विकेट से कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता, और भी बड़े अंतर से जीत सकते थे, लेकिन भाई दोनों ही टीमें जो है फिर बैलेंस करके आगे बढ़ी। तो कोलकाता नाइट राइडर्स रही कल की विनर्स, 7 बॉलों के रहते 4 विकेट से उन्होंने जीत दर्ज की। आज क्या होगा, गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग भिड़ेंगे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, भाई विशाल स्टेडियम, और भाई घरेलू सपोर्ट मिलेगी गुजरात टाइटंस को, पर देखते हैं कि नतीजा क्या होगा। मैच स्टार्ट्स एट 3 PM, स्कोर के आंकड़े हम आपको बताते रहेंगे, सुनते रहिएगा लाइका रेडियो नेटवर्क।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय Remitly, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द Remitly ऐप टुडे। Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
4: Leica Radio.
5: Lister, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
6: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी, मुस्तफा बासमती XXL राइस 40 LBS सिर्फ $24.99,
5: हमजा समोसास 3 for $10,
6: टॉप स्टार फ्राइड अनियंस ओनली 99p,
5: सुहाना मसालास 2 for $150, रामदेव नमकीन 2 for $149,
6: हीराग्राम फ्लावर 179, हाइंस केचप 279,
5: केसर मैंगो पल 149, फूल मखाना 2 for $5, फाल्कन कैश एंड कैरी
6: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या Rowlatt Hill LE54UN.
5: While stocks last.
7: The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
8: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
7: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
8: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
7: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Live, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
9: Z100.
4: ZTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Laika Radio.
9: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
10: Backed for the trip? Gifts? Passport?
11: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
10: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
11: Simzy?
10: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
12: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
13: Location, location, location.
14: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
13: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
14: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
13: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
14: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
13: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
14: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
13: High appreciation.
14: In Dubai.
15: None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open. From flame grilled chicken to mouth-watering wraps. It's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street. CV 11 5BZ. Pepe's Piri Piri. Pepe Licious.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
2: एक जमाने से महिलाएं जेवर गुम करती आ रही हैं और हम ढूंढते रहे हैं, आज तक मिले नहीं हैं।

जैसी हो ना हो किस्मत की वो है की नटिंग में इस कदर हो कि मेरी मालूम हो बेटी

0: चाहिए खूबियों वाली, तिरछी तिरछी तिरछी तिरछी नजरों वाली, ओ गौरी गौरी गौरी ओ गौरी हो के काली, जो जहां के वाली मिल जाए तो फिर बस मिल जाए तो फिर एक चाय की प्याली
1: चाय बनाने वाली, अरे साहब चाय पिलाने वाली, चाय स्टूडियो में लाने वाली है कोई? वो कहते हैं कि आज तो नेशनल टी डे है। भाई मैं तो चाय का इतना दीवाना नहीं हूं, मिल जाती है तो पी लेते हैं। अब वो कभी कॉफी कभी चाय बनाने वाली दोनों की दोनों कायम है। एक वो खुश बराबर के स्टूडियो से कभी कभी वो लाती थी तो कभी काजल लाती थी। और अब देखो हमारे जो श्रोताओं में से अंजलि भिजवा रही है चाय, लेकिन कैसे भिजवा रही है, स्क्रीन पे फोटो भिजवा रही है। अंजलि ऊपर वाला सब देखता है, ये कोई तरीका है चाय भेजने का? इतने सारे कप भेज दिए हैं, अकेला कैसे पीऊंगा इतनी सारी चाय? भाई आज वो कहती है कि इंटरनेशनल टी डे है शर्मा जी, अगर आप चाय नहीं भी पीते हो तो आज पी लीजिएगा। अरे मैं तो पी लूं पर कोई पिलाने वाला भी तो हो, गरम गरम चाय। और गरम गरम चाय है ना, हाँ हाँ आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई

0: gila.
1: Siap mangga tum ha.
2: थैंक यू अंजलि सिंह भाई ये गरम गरम चाय भिजवाने के लिए। बल अगर मैं भी गाने ऐसे ही आपको स्क्रीन पे भिजवा दूं लिख करके सुनाई ना पड़े तो कैसा लगेगा आपको हाँ। और एक बात है भाई ये चाय का रिश्ता जो है लोगों से, हमारी अनीसा नासिर जो है वो भी आजकल छुट्टी पे गई हुई है, वरना वो तो चाय के बिना जी नहीं सकती आपको बताऊं।

0: वो तो बस वो गाना गाती रहती है, मुझे चाय ना मिले ता मर जावा। और साहब चाय का मुझे याद आता है भाई, प्लेटफार्म पर रेलवे स्टेशन पर वो चाय वाले जब आवाज लगाते हैं ना, तो गाड़ियां आती जाती रहती रात के 1 बजे 2 बजे, उनकी आवाज नहीं निकलती, पर चाय बेचनी होती है तो उनकी आवाज कैसे कैसे बोलते थे वो, नींद में है थके हुए हैं और सुबह से चाय बेच रहे, लेकिन रात को 12 बजे ट्रेन आती है और उनको चाय बेचनी है तो वो बस वहां से आवाज लगाते हैं, कोई मांगे ना मांगे, लेकिन जब भाई सुबह सुबह ताजे ताजे जब आते हैं नहा धो के, फिर उनके स्वर बदल जाते हैं, फिर वो आवाज ऐसे लगाते हैं कैसे,
1: अच्छा चा चा चा चाहे अच्छा चा चा चा चाहे।
0: भाई चाय का स्वाद आपने चख लिया, अब लौट आइए और रियलिटी से भाई मुलाकात कीजिए, हमारे साथ कीजिए। पहले तो पता लगाते हैं कि पाउंड का रेट क्या दे रहे हैं एसबीआई वाले।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK telling that by they are giving 129.15 rupees for 1 pound if you want to send money to your people. Aur bhai is mahine mein June ke aakhir tak to khaas avsar hai, aap send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and you could be in to win a 75 pounds voucher every day when you send over 1000 pounds. To bhai ye mauka mil sakta hai aapko, 75 pounds voucher jeetne ka, ye har roz vijeta banenge. Aur iske alawa 1 gram gold coin every week when sending over 2000 pounds. Terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy to let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
3: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
4: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
4: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
5: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
6: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
7: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
6: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
7: गारंटेड
6: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
7: फोन 02085748410।
6: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash-in carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.

0: Asia Basmati Rice available on special offers at Falcon Cash & Carry, Syston Street, Leicester and Nottingham. Hurry while stocks last.
1: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
0: Save the date. Friday 3rd to Sunday the 5th of July. And Indian summer is back.
2: Presented by Inspirate. Exclusive radio partner, Leica Radio Midlands.
0: For sponsorship inquiries, call Leica Radio on 0116 471 0697.
2: Or sales at leicamedia.co.uk.
3: Lester Mellor is back with exclusive radio partner, Leica Radio. August 15th and 16th at Abbey Park, Leicester.
4: If I'm going out on my new paddleboard, the last thing I'm taking is my phone, right? Buoyancy aid, fine. But mobile? My whole life's on that phone. Why would I risk losing it in the... Coast Guard, help!
5: Okay, help's on its way.
6: Grab my hand!
7: Phone. In a waterproof pouch. It's the first thing I pack now.
8: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
3: Miss your favourite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be Breakfast with Kajal, Drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want. This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station, playing Bollywood classics 24/7, and with your favourite presenters live? Get the tune-in details at leicagold.com. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
9: और डीजे साहब आर्टिस्ट ऑफ द वीक से आपकी मुलाकात करवाते हैं, लेकिन उससे पहले चाय पिलाते हैं। इंटरनेशनल टी डे है आज, और अंजलि सिंह आप कह रही कि हमारे घर आइए, हम आपको अदरक वाली चाय पिलाएंगे। रहने दो, पहले भी कईयों ने बुलाया है और हर बार उन्होंने गलत एड्रेस दे के हमें कहीं और ही पहुंचाया है। कहीं सैंडलों से पिटवाया है, तो कहीं पर कुत्तों से हमारी पैंट का सैंपल मंगवाया है। एक क्या भाई, कुत्ता पाल रखा हो, पहलवान का घर था, पहलवान का कुत्ता, पहलवान से भी ज्यादा बड़ा कुत्ता, मेरा मतलब बड़ा पहलवान, और साहब उसने जो अटैक किया तो हमारी पैंट का थोड़ा सा सैंपल उन्होंने रख लिया, पैंट का कपड़ा रख लिया, शायद नहीं बनवा के भेजेंगे देखो। लेकिन हमारे पेरिस वाले श्रोता कहते हैं, मोहब्बत भाई पेरिस से मोहब्बत खान कहते हैं कि हम मोहब्बत करते हैं तो निभाते हैं। शर्मा जी हमारे यहाँ आइए, चाय पिलाएंगे। तो साहब चले, बड़े दिल वाले श्रोता हैं हमारे, चाय जरूर पिलाएंगे इंटरनेशनल टीडी पर। मोहब्बत भाई हम पेरिस आ रहे हैं। आर्टिस्ट ऑफ द वीक इज शम्मी कपूर, जिन्होंने भाई हमें पेरिस घर बैठे दिखाया था।
10: अजी ऐसा मौका

मोहम्मद भाई कह रहे हैं कि अब 25 बरसों से आपको सुन रहा हूँ। सुनते रहिएगा भाई, मैं तो 50 बरसों से ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ। ये गीत आपके नाम।

0: एन इवनिंग इन पेरिस का गीत आपने सुना। भाई शम्मी कपूर हैं इस सप्ताह के आर्टिस्ट आर्टिस्ट ऑफ द वीक और उनकी फिल्मों के गीत गूंज रहे हैं लगातार, आप सुनते रहेंगे वीकेंड तक उनकी फिल्मों के गीत स्पेशली। भाई जुनैरा आपका संदेश मिला, थैंक यू वेरी मच, सुनती रहिएगा, हम भी आपकी आवाज जो है सुन रहे हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू, आपकी हेलो पहुंच गई है।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

रेडिंग में अनु गर्ग की पसंद, और ये गीत आप कहती है कि हमारी सहेली आराधना को सुनवा दीजिएगा। लग जा गले।

0: विजय सटन वाले और विजय मॉरिशस वाले, आप दोनों के नाम ये गीत। इसके अलावा टोरंटो में उल्लास, थैंक यू वेरी मच। नैना जी आप तो हमेशा साथ रहती हैं हमारी। बैक्सली हीट में हैं आप।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और भाई अब एक संदेश आपके लिए, लेकिन ये क्या लिखा आपने सहर जी के, मैं पिछले 46 बरस से आपके प्रोग्राम सुन रही हूँ। 46 बरस से, इतनी उम्र है मेरी नहीं, आपकी तो होगी, आप सुन रही हैं। मैडम अगर रातें निकाल दो तो बर वही आप फिर क्या काउंट करिएगा, रातें निकाल के तो मैं 36 का बनता हूँ, थोड़ा सा 37 के नजदीक हाँ। थैंक यू वेरी मच, पर आप बहुत देर से सुन रही हैं, इसका एहसास है हमें, हमारे साथ जुड़ी हैं। और प्रतिभा जी थैंक यू, आपकी पसंद का गीत आप अपने नाम कर लीजिए, मैं देखता हूँ कौन रोकता है। हाँ तोची जी आपका भी संदेश मिल गया है, क्या बात है। रवि आप अपने वाले तो क्या है माने मानो चाय क्या आपसे ऊपर तो नहीं है। हाँ अरे हमारे से ऊपर ही है ये चाय, लोग कहते आप आइए तो सही है, चाय आपसे ऊपर थोड़ा ही है, बना के पिलाएंगे भाई। इस चाय के भरोसे हमने बहुत धक्के खाए हैं बता दूं। वैसे चाय पर ना बहुत सारे सौदे होते हैं, समझौते होते हैं, बड़े बड़े कंट्रीज के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो चाय पे मिलते हैं, और साहब चाय के ऊपर तो रिश्ते भी होते हैं। शायद मेरी शादी का ख्याल मन में आया है इसीलिए मम्मी ने आपको चाय पे बुलाया। तो मम्मी ने क्यों बुलाया भाई, आप क्यों खुद क्यों नहीं बुलाती है, मम्मी ने चाय पे बुलाया। और फिर मम्मी कहेंगी कि चाय बेटी ने बनाई है, अपने हाथों से बनाई है, पैरों से कौन बनाता है भाई।
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

याद दिला दें आपको, लाइका रेडियो नेटवर्क हैज कंफर्म्ड अ पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागा सन. डिटेल्स एट लाइका रेडियो डॉट कॉम, देख लीजिएगा. और लाइका रेडियो नेटवर्क इज द कन्फर्म पार्टनर ऑफ कुमार शानू शो एज वेल. कुमार शानू लाइव इन कॉन्सर्ट इन द प्रेस्टिजियस रॉयल एल्बर्ट हॉल.

0: holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: और साउथ हॉल ट्रैवल वालों की भी सुन लीजिए भाई, वो याद दिला रहे हैं कि मेक दिस समर मेमोरेबल विद साउथ हॉल ट्रैवल। छुट्टियां मनाइए और साउथ हॉल ट्रैवल के साथ जाइए, एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड फ्लाइट्स, होटल्स एंड एट ऑल प्रोटेक्शन। भाई 40 वर्षों से भी ज्यादा समय से वो सेवा में हैं, भरोसेमंद हैं और विनर्स ऑफ द ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड भी हैं। विजिट साउथ हॉल ट्रैवल ऑन कॉल 0208 574 8410।

0: ये है लाइका रेडियो। India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly. Great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
1: और बहनों भाइयों, टाटा आईपीएल पीएल 2026 के मुकाबले अपने समापन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं भाई सेमीफाइनल और फाइनल में कौन जगह बनाते हैं। लेकिन उससे पहले कल का हम रिजल्ट बताते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। कोलकाता वालों ने मुंबई वालों को हरा दिया 4 विकेट से 7 गेंदों के रहते। आज भाई 74 मैच टोटल खेले जाने आईपीएल में, 74 मैचेस, और आज 66वां मैच खेला जाएगा गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। अब से करीब 2 घंटे बाद मैच शुरू होगा 3 बजे, और ये मैच खेला जाएगा गुजरात में अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो है दुनिया का सबसे विशाल क्रिकेट स्टेडियम। और भाई वहाँ से जो क्रिकेट के आंकड़े मिलेंगे हम आप तक पहुँचाएंगे। आप सुनते रहिएगा और देखते हैं भाई फाइनल तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक एक मैच का रिजल्ट और भाई उसकी स्थिति हम आपको सुनवाते रहेंगे।
0: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय Remitly, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द Remitly ऐप टुडे। Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA. Like a radio.
2: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
3: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी। मुस्तफा बासमती XXL राइस 40 LBS सिर्फ 24.99।
2: हमजा समोसास 3 for 10।
3: टॉप स्टार फ्राइड अनियंस ओनली 99p।
2: सुहाना मसालास 2 for 150। रामदेव नमकीन 2 for 149।
3: हीरा ग्राम फ्लावर 179। हाइंस केचप 279।
2: केसर मैंगो पल 149। फूल मखाना 245। फाल्कन कैश एंड कैरी
3: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट्स हिल LE54 UN.
2: While stocks last,
4: are we there yet?
5: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
4: Relax, I've booked the Uber already.
5: How? My roaming isn't even working yet.
4: I switched to Simsy before we left London.
5: Simsy? Since when are you the tech expert?
4: Since I decided I want a stress-free holiday.
6: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
4: T's and C's apply.
7: 105 શોઝ પૂરા કર્યા પછી હવે લેસ્ટરમાં આવી રહ્યું છે એક ધમાકેદાર ઇન્ટરનેશનલ ગુજરાતી કોમેડી નાટક
8: જેઝ એન્ટરટેનમેન્ટ લઈને આવી રહ્યા છે સખણા રેજો હસમણજી
7: લીના શાહ અને સમીર શાહ સાથે હાસ્યનો ફૂલ ડોઝ 28 જૂન પીપલ સેન્ટર લેસ્ટરમાં 2 શાનદાર શોઝ બપોરે 2:30 વાગે અને સાંજે 7 વાગે ટિકિટ બુકિંગ માટે કોલ કરો મિસ્ટર B07860280655 મુંબઈ સેન્ડવિચ સ્ટેશન 07834832249 અથવા eventbrite.co.uk સકના રેજો હસબન્ડજી
9: સિટી બોન્ડ ટ્રાવેલ પ્રાઉડલી પ્રેઝન્ટ્સ યાત્રા ટૂર્સ 2026
10: ડિસ્કવર કૈલાસ માનસરોવર ચારધામ અમરનાથ શ્રીલંકા વિથ અયોધ્યા અયોધ્યા વિથ કાશી ધ ગોલ્ડન ટેમ્પલ અમૃતસર એન્ડ મોર
9: બુક બિફોર ધ 31st ઓફ ઓક્ટોબર એન્ડ ગેટ £150 ઓફ કૈલાશ ઓર £100 ઓફ એની અધર યાત્રા ટૂર
10: ઓલસો એક્સપ્લોર 2026 ક્રુઝિસ
9: ફ્રોમ અલાસ્કા ટુ ધ કેરેબિયન ધ મેડિટરેનિયન જપાન એન્ડ કોરિયા વિઝિટ અસ એટ 5 મિલ્ટન રોડ લેસ્ટર ઓર કોલ સિટી બોન્ડ ટ્રાવેલ ઓન 01162 167225. We're at all protected.
11: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
12: Location, location, location.
13: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
12: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
13: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
12: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
13: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
12: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just 711,000 pounds. £10.
13: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
12: high appreciation
13: in Dubai.
3: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
9: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
14: Manoranjan with Ravi Sharma.
1: और लीजिए साहब, अब आपसे क्या कहते हैं, इजाजत लेने का समय हो गया है। कोई बुला रहा है तो रवि शर्मा चला जा रहा है। दरअसल बात यह है कि अकेले हैं तो क्या गम है। यहां स्टूडियो में हम अकेले बैठते हैं, पर इस बात का एहसास रहता है कि एक एक श्रोता हमारे पास रहता है। पर भाई, अकेलापन तो तब होता है जब आपसे बिछड़ के दूर जाते हैं, और जब तक लौट नहीं आते हैं ये अकेलापन साथ रहता है। पर अकेलेपन में भी हम अपने गम को सजाकर बाहर कर लेंगे और तेरे ख्याल से चुपके से प्यार कर लेंगे। अब इस आवाज का पीछा करते हुए मुझे जाना होगा, सरिता सबरवाल को आना होगा। शील बी विद यू आफ्टर 1 o'clock न्यूज। अगली मुलाकात तक के लिए रवि शर्मा को इजाजत दीजिए। Have a superb day and bye bye from me now.

बैक टू बैक दो गाने आपने सुने। आज के प्रोग्राम का आगाज मैंने किया फिल्म दाग के गीत के साथ, दाग द फायर। महिमा चौधरी थी, चंद्रचूड़।

0: सिंह थे इस फिल्म में एंड संजय दत्त थे. बहुत खूबसूरत फिल्म थी और इस फिल्म का संगीत भी बड़ा ज़बरदस्त था. सारे गाने बड़े बड़े पॉपुलर हुए थे और मुझे सारे के सारे गाने इस फिल्म के अच्छे लगते हैं. इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, इस फिल्म का संगीत दिया था राजेश रोशन जी ने, पर आप चेक कर सकते हैं. अगर नहीं गलत कह रही है सरिता तो आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं. और दूसरा गीत मैंने फिल्म ललकार से चुना था, मोहम्मद रफ़ी साहब एंड लता जी की आवाज़ें. और पहले गीत में आवाज़ें किसकी थी? उदित नारायण एंड अलका याग्निक की. आप जहाँ भी बैठे सुन रहे हैं, आपका स्वागत, आपका खैर मकदम है. मेरे साथ साथ चल रहे हैं, यस, आप पूरी स्क्रीन भरी हुई है आपके मैसेजेस के साथ. अभी तो मैं आई हूँ, थैंक यू एवर सो मच. आप मेरा स्वागत करते हैं तो मैं भी दिल से आपका स्वागत करती हूँ. और जहाँ भी बैठे हैं यही पूछना चाहूँगी, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक तो है ना आप? खुश रहें, खैरियत से रहें, ज़िंदगी को इंजॉय करते रहें. ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी. इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून. इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन तो चेयर अप. लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू इंजॉय. जी और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते, महकते और सिरकते हुए गाने तो चुन चुन कर लाती है सरिता सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए. सो आज के गीतों में क्या चल रहा है, कुछ पता चला है या नहीं पता चला? अगर पता चला है तो बता दीजिए, अगर नहीं पता चला तो भी कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी, कुछ ही देर में बता दूंगी. कोई कंपटीशन तो है ही नहीं है, वैसे ही ज़रा सिलसिला चला लेते हैं कोई ना कोई, ताकि ताकि आपका भी दिमाग काम करता रहे. ओह नेक्स्ट गाना कौन सा हो सकता है, ओह ये वाला गाना सुनना चाहेंगे इस मौजू पर, या ये चेन बन रही है तो नेक्स्ट कौन सा वर्ड आने वाला है. अगर आपको अभी नहीं पता चला है तो मैं बता देती हूँ, नेक्स्ट वर्ड होगा यार. यस, बोल मेरे साथ ये आपने सुन लिया. प्यार हमें प्यार तुम कितना करते हो, और कितना वॉज द वर्ड जो मैंने चुना था नेक्स्ट सॉन्ग में, बोल मेरे साथ या कितना मुझसे प्यार है. और अब अगला वर्ड क्या हो सकता है, सोचिए सोचिए और फिर मुझे बताइएगा.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, V. अगर आप इंडिया पैसे भेजना चाहते हैं, your one pound in British sterling can get you today 129 rupees and 15 paisas. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a 75 pounds voucher every day when you send over 1000 pounds. Also a 1 gram gold coin every week when sending over 2000 pounds. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
4: ट्रांसफर मनी होम एंड टर्न एवरी ट्रांसफर into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
5: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
4: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
5: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
4: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
5: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
4: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
6: Frankie Goes to Bollywood is back. Dive into a breathtakingly colourful journey of romance, epic songs, spectacular dancing with brand new songs by Bollywood hitmaker Harry Anand. This show-stopping musical celebrates ambition, transformation and the power of owning your own story. From the producers of Britain's Got Bhangra and Surinderella, Frankie Goes to Bollywood comes to the Oxford Playhouse, 2nd to the 6th of June. June. For tickets and more info, click oxfordplayhouse.com. Radio partner Lyco Radio.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
8: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: Halke fulke moments ko aur bhi khas banaye Jamin snacks ke halke fulke puff bites ke saath.
10: Rice kaun se bane light aur quality mein best? Jamin puff bites jo hai barbecue, lemon chili, mast masala aur Mexican salsa jaise flavors mein available.
9: Jamin puff bites available at your nearest ethnic grocery stores.
11: Save the date. Friday 3rd to Sunday the 5th of July. An Indian summer is back.
12: Presented by Inspirate. Exclusive radio partner, Lyco Radio Midlands.
11: For sponsorship inquiries, call Lyco Radio on 0116 471 0697.
12: Or sales at lycomedia.co.uk.
13: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
14: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
1: Listen back to your favorite shows by logging on to LycaRadio.com and selecting Midlands or the mobile app. Did you know that Lyca Gold is the UK's first Asian retro music station? Listen to Bollywood classics 24/7 with live presenters on 10:35 a.m. and DAB in London and on the Lyca Radio mobile app. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
15: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: एक ही नाम की दो फिल्मों के गीत सुन लिए आपने. दाग द फायर चुननी थी मैंने 1999 की फिल्म, और फिर ये फिल्म दाग आई थी 1973 में. यश चोपड़ा जी की फिल्म थी जिसमें काम किया था राखी, शर्मिला टैगोर एंड राजेश खन्ना ने. बहुत दमदार एक्टिंग थी तीनों एक्टर्स की. और ये गाना जो था ये मीनू पुरुषोत्तम ने गाया था एंड साथ दे रही थी लता मंगेशकर जी. बहुत खूबसूरत गीत था एंड शर्मिला टैगोर पर ये गाना पिक्चराइज हुआ था. शर्मिला टैगोर एंड राखी दोनों की एक्टिंग वाओ, दोनों मेरी फेवरेट हैं वैसे. और सारे गाने बड़े अच्छे थे. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत था. उम्मीद करती हूँ मेरी पसंद आपकी पसंद भी जरूर बनी. और अब अगला गीत किस वर्ड पर आ रहा है सोचते रहिए.
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
2: प्यार हमें प्यार तुम कितना करते हो, यार मेरे यार हम पे कितना मरते हो.
3: हम प्यार तुम्हें करते हैं, हमें अपना

0: हमें अपना बना।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स, गुडनेस इन एवरी बाइट, ट्राई इट टुडे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
2: भी हम प्यार तुम्हें करते हैं, हमें अपना बना कर देखो भाई, ये मैसेज मेरी तरफ से आपके लिए भी था। थैंक यू सो मच, आप मुझे अपना बना रहे हैं और अपने मैसेजेस भेज रहे हैं। मिसेस पाके चेयांग, आपका मैसेज मिल गया मुझे। और ये कौन है, ब्लू टी भेजी है, ब्लू टी किसने भेजी भाई? ब्लू टी अपराजिता फ्लावर की टी है ये, आपको बहुत अच्छी लगेगी रियली। नमस्ते सरिता जी, आपको भी, अ कप ऑफ टी इज अ हग इन अ मग, वाओ वाओ वाओ, थैंक यू सो मच। इसी तरह हैप्पी इंटरनेशनल टी डे है आज, ओके, तो चाय पिला रही हैं आप हमें, थैंक यू। आप भी पीजिए, चुस्कियां भी लीजिए साथ साथ। विजय गनोवा जी सुन रहे हैं आप, इजाज इन चशम उल्लास इन टोरंटो, एंड सहर मानसी जी, सबके मैसेजेस मिल गए। राजू जी, राजेश जी, विजय गुदरी, आपका भी मैसेज मिल गया। हना, विश्वजीत, राजू, थैंक यू। तोची वनेसर जी, आप भी बड़े प्यार से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, एंड आप कहाँ हैं, कहाँ बैठे सुन रहे हैं बताना चाहते हैं, तो देर मत कीजिएगा, जल्दी से बताइए। और अब अगला गाना किस वर्ड पर होगा, हम तुम पे मरते हैं, वो यही था ना, मरते हैं, मरते मरते मरते हैं, ओके। यार मेरे यार, हम पे कितना मरते हो, तो मैंने वर्ड चुना है मरते। कौन सा गाना हो सकता है, जल्दी से बता दीजिएगा।
3: Wake up to Kajal on breakfast every weekday at 6 a.m. and drive back with Raj Badden weekdays at 4 p.m. Like
4: radio. Gemin Foods sponsors Gold Afternoons, from dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.

आंसू आंखों का काजल, काजल पर था ये गीत और मुझे उम्मीद है कि आपने इस गीत को भी पसंद किया। दूसरा आदमी, ये था फिल्म का नाम और गीत इस फिल्म के सारे बहुत अच्छे थे। एंड अगेन आई विल से कि आई थिंक राजेश रोशन का ही संगीत था इस फिल्म में भी। आप सुन रहे हैं, जहाँ भी बैठे मेरा साथ दे रहे हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे गाने पसंद आ रहे हैं। दिनेश पोपट जी जस्ट जॉइन, हंसा बोरा जी, विजय गुत्री, अंजलि जी, मिसेस शुक्ला, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड विजय गनोवा आप भी पहुँच गए हैं, भरत गंगाराम जी, पाके जाज इन चशम, थैंक यू। आइए इस गीत के साथ साथ हम नेक्स्ट आवर में पहुँचते हैं और नेक्स्ट आवर में अच्छे अच्छे गीत होंगे सुबोध मुखर्जी की फिल्मों के।

0: गुड आफ्टरनून प्रोग्राम के सेकेंड आवर में हमने कदम रखा, दो गीत आपने सुन लिए। इस 15 मिनट्स आफ्टर 2 o'clock, कैसे हैं आप, कैसे गुजार रहे हैं आज का दिन? दोपहर क्या हो रहा है इस वक्त? टीवी देख रहे हैं और कान इस तरफ हैं, या घर के दूसरे काम कर रहे हैं और रेडियो ऑन है और आप इंजॉय कर रहे हैं? किसी ने मुझे लिखा अभी अभी कि गार्डन में बैठे प्रोग्राम सुन रहे हैं आप। कौन थे वो जिन्होंने लिखा कि हम गार्डन में बैठे सुन रहे हैं प्रोग्राम? यस, नमस्कार सरिता जी, रेडियो इन द गार्डन एंजॉयिंग योर स्वीट प्रोग्राम, ब्लेसिंग्स टू यू। एंड ये है विभाकर स्टैनमोर में। अच्छा, इतनी गर्मी है कि गार्डन में बैठे आप। रमीला पटेल अहरो में सुन रही हैं, हरीश रुडा जी, प्रकाश सोमाया जी, जगदीश चीन बुशी, दिनेश पोपट जी, हंसा बोरा जी, विजय आपका भी धन्यवाद, मनु जी, अर्जुन जी, आप सभी पहुँच चुके हैं और पहले भी कुछ नाम ले चुकी हूँ। मिसेस शेख, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से सुनते रहें, इंजॉय करते रहें प्रोग्राम के इस आवर के पहले दो गाने। राइट, पहला गीत मैंने चुना था फिल्म तीसरी आंख से, 1982 की फिल्म थी ये। और इसकी एक वजह ये है कि आज हम याद कर रहे हैं सुबोध मुखर्जी को। सुबोध मुखर्जी के बारे में बहुत से मेरे साथी जानते होंगे। ही वॉज बॉर्न ऑन 14th of April 1921 में एंड 21st of May 2005 में वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आज उनकी पुण्यतिथि है, डेथ एनिवर्सरी है, तो हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। ही वॉज एन इंडियन फिल्म मेकर, बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड ही इज रिटन फ्यू स्टोरीज एज वेल। ही डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड हिंदी फिल्म्स दैट वर पॉपुलर इन देयर टाइम। ही केम फ्रॉम अ फैमिली इन्वॉल्व इन फिल्म मेकिंग एंड वॉज पार्ट ऑफ द फेमस मुखर्जी फैमिली विच हैड सेवरल मेम्बर्स इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड ही वॉज द ब्रदर ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर डायरेक्टर शशाधर मुखर्जी एंड ही वॉज अ डिवोटी ऑफ द स्कूल ऑफ मूवी मेकिंग दैट बिलीव्ड दैट फिल्म वर ऑल अबाउट great storytelling. In the first two decades of his career, he had a high success percentage and he continued making movies till the late 1960s or before retiring. Lekin, unhone, Subodh Mukherjee ne teesri aankh bhi banayi thi in 1982 mein. Yes, jiska geet maine program mein shamil kiya. He produced that film and then in 1985 Ulta Seedha was another film jo inhone produce bhi ki thi aur डायरेक्ट भी की थी और इसमें किसने काम किया था, राज बब्बर थे एंड रति अग्निहोत्री इन द लीड रोल। उस फिल्म के गाने इतने ज़्यादा फेमस नहीं हुए थे लेकिन फिल्म अच्छी थी। और भी इनके बारे में बातचीत होती रहेगी पर हम अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको चॉइस देने जा रही हूँ दो गीतों की, क्योंकि नेक्स्ट मैंने जो फिल्म चुनी है वो है फिल्म अभिनेत्री। अभिनेत्री के दो गीतों में से मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सा गाना होना चाहिए, कौन सा, दोनों ही गीत मुझे पसंद है। एक है ओ घटा सांवरी और दूसरा गीत है सजना ओ सजना। इन दोनों गीतों में से कौन सा गीत आपको ज़्यादा पसंद है, जल्दी से वोट दीजिए ताकि मैं चयन कर सकूँ उस गीत का, उस गीत को सिलेक्ट कर सकूँ जो आपकी भी पसंद है। ओ घटा सांवरी इज ए एंड सजना ओ सजना इज B.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: और आज आपका 1 ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड कितने पैसे दिला सकता है, 128 rupees and 75 paisas। एंड सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून और फिर आपको क्या मिल सकता है, win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Aur yahi nahi, also a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons with Bali Brambert. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India, bringing authentic flavors to your table every day. Find Gemin at Asian stores near you. Gemin.
3: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
4: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी, मुस्तफा बासमती XXL राइस 40 LBS सिर्फ 24.99,
3: हमजा समोसास 3 for 10,
4: टॉप स्टार फ्राइड अनियंस ओनली 99p,
3: सुहाना मसालास 2 for 150, रामदेव नमकीन 2 for 149,
4: हीरा ग्राम फ्लावर 179, हाइंस केचप 279,
3: केसर मैंगो पल 149, फूल मखाना 245, फाल्कन कैश एंड कैरी
4: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट्स हिल LE54UN.
3: While stocks last.
5: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
6: Atif Aslam live in the UK.
5: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
6: Book your tickets now at AXS.
5: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
6: Exclusive radio partner, Leica Radio.
7: Packed for the trip? Gifts? Passport?
8: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
7: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
8: Simzy?
7: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
9: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
10: Citybond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
11: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
10: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
11: Also explore 2026 cruises.
10: From Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
12: Be part of a historic grand opening.
13: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
12: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
13: Departure 5th of September. Call now on 02-03-773-633.
12: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
14: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
15: If you see somebody showing any of the signs of a stroke, you don't have to think about it, you just dial 999. Use the FAST test. F, face. Has their face fallen on one side? Can they smile? A. Arms. Can they raise both arms and keep them there? S. Speech. Is their speech slurred? T. Time. Time to call 999 if you see any one of these signs. Act fast. Make the call. Dial 999.
16: It was just another day. A familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: गीत आपने सुना और इंजॉय भी किया, यस मुझे मालूम है. और अब मैं अपने सभी सुनने वाले को ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप किशोर कुमार के बहुत बड़े फैन हैं तो स्पेशल म्यूजिकल नाइट फीचर्स फीचरिंग केतन इंद्रानी एंड संजय और इनके साथ बैंड होगा 515 बैंड. इट टेक्स प्लेस ऑन फ्राइडे 19 जून एट द प्रिंस रिजेंट होटल चिगवेल में है ये इन एसेक्स. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर कौन है? आपके लाइका गोल्ड रेडियो. सो अगर आप जाना चाहते हैं तो डेट भी नोट कर लीजिए और वेन्यू.
0: दिस इज लाइका रेडियो. Tasty track of the hour.
2: Hi, Aman.
0: Coca Noodles.

0: एक से बढ़कर एक गीत आपको पसंद आ रहे हैं. थैंक यू सो मच. आपने ज़्यादातर भी वोट जो दिए थे सजना और संजना वाले गीत को दिए थे. थैंक यू. इस मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने भी दूसरे गीत को पसंद किया था कोई बात नहीं है, आने वाले दिनों में वो गीत भी शामिल होगा. एंड सुबोध मुखर्जी ने प्रोड्यूस की, मुनीम जी इनके ब्रदर ने की थी प्रोड्यूस, लेकिन डायरेक्ट की थी मुनीम जी. सुबोध मुखर्जी ने पेइंग गेस्ट. लव मैरिज वाज प्रोड्यूस एंड डायरेक्टेड बाय हिम. जंगली वाज प्रोड्यूस एंड डायरेक्टेड. एंड अप्रैल फूल, साज और आवाज, शागिर्द, अभिनेत्री, ये फिल्में सभी सुबोध मुखर्जी की हैं. आज अब हम उन्हें याद करें उनके गीतों के जरिए.
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोको नूडल्स. मोर फ्लेवर्स, मोर कन्वीनियंस, more yum. Grab your Coca bowl today. LYCA. This is Leica.
0: और भाई सरिता आपको याद दिला दे जल्दी से कि कुमार सानू लाइव शो हो रहा है. लाइका रेडियो नेटवर्क ने स्पॉन्सर किया है. वेल दे आर द कन्फर्म पार्टनर हैं. और कुमार सानू लाइव कॉन्सर्ट एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अल्बर्ट हॉल इज टेकिंग प्लेस ऑन मंडे 25th मे इस बैंक हॉलीडे को. सो टिकट्स अपनी बुक कराएं. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे. अरे भाई सरिता, आधी बात कही और वहीं पर रुक गई. एनीवे, मेक दिस समर मेमोरेबल with South Hull Travel. Explore beach breaks, city escapes and more with the holiday deals and that includes flights as well. Flights, hotel and atoll protected hain. Protection bhi milegi aapko. And trusted for over 40 years and winner of British Travel Award. Visit South Hull Travel or call them on 0208-574-8410.
1: Breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Leica Extra Podcast Update.
0: जी हाँ, हम बहुत सारे गीतों के साथ साथ और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके साथ शेयर करते हैं हम. एंड लाइका एक्स्ट्रा जो पॉडकास्ट एपिसोड है 16th, इसमें बातचीत होगी इंडिया वीक शो के इसकी, होस्टेड बाय अनुज राडिया. एंड लाइका रेडियो नेटवर्क आर ऑफिशियल रेडियो पार्टनर्स ऑफ इंडिया वीक फ्रॉम 26th of May टिल 31st of May. अगर पुराने एपिसोड भी देखना चाहते हैं, वेडिंग एंड बियॉन्ड, होम स्कूलिंग डिबेट एंड विल्स एंड प्रोपेट के बारे में, तो लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट देखिएगा, विच इज अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, एमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म.
1: लाइका एक्स्ट्रा इज
2: हियर. ये है
1: लाइका रेडियो.
2: Gold Afternoons is sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
3: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
4: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
4: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
5: 105 shows pura karya pachi have Leicester ma avi rahyu che ek dhamakedar international Gujarati comedy natak.
6: Jay's Entertainment line avi rahya che sakhna re jo husband ji.
5: Leena Shah ane Samir Shah sathe hasyano full dose. 28 June People Center Leicester ma be shandar shows bapore 8 vage ane sanje 7 vage. Tickets booking mate
7: કોલ કરો મિસ્ટર બી 07860280655 મુંબઈ સેન્ડવિચ સ્ટેશન 07834832249 અથવા eventbrite.co.uk. સકના રહેજો હસબન્ડજી.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
9: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: Har crunchy bite mein ek khas ethnic swaad. Har fry am shape mein hai wo bachpan ki yaad.
11: Snack time hunger ko banaye aur bhi tasty with Jaymin's fry ams in different shapes and yummiest flavors like lemon chili mint, manchurian, masala, peri peri aur shezwan with best quality and same ethnic taste.
12: Jaymin fry ams available at your nearest ethnic grocery stores.
13: Mom, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
14: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure Herbal Care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
13: So where do we find something like that now?
14: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic Premium and made it the way our eldest used it.
15: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy.
16: Sidhayu, now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham.
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
17: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit heartyhanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit heartyhanks.com now.
18: Abira, yahan se mera rasta bahut mushkil hone wala hai. Kya tum mere saath?
19: Jahan tum ban
18: gaya. Ye faisla mera tha. Bhukat tum rahi ho. Main kuch nahi kar pa raha hu. Kuch nahi kar pa raha hu.
19: अगर हम साथ हैं
18: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे.
20: खुशियों को लगी वक्त की नजर, कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर.
21: ये रिश्ता क्या कहलाता है. मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस. अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803, EE 392 and TV. प्रेजेंटेड बाय travelup.com, पावर्ड बाय नाटको फूड्स.
22: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. That's 020-3773-633. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
23: जिसको सबकी खुशी का है ख्याल, क्या है उसके दिल का हाल. मिलिए अनुपमा से.
24: अनुपमा मंडे टू संडे एट 8:30 PM ओनली ऑन उत्सव प्लस. उत्सव प्लस स्काई चैनल 705, वेजी मीडिया 803 एंड EE 392.
25: प्रेजेंटेड बाय साउथ होल ट्रैवल, पावर्ड बाय टाटा टी प्रीमियम एंड वेल मैन एंड वेल वुमन बाय विटाबायोटिक्स.
1: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. On this week's Leica Extra podcast, we bring you a special on India Week, hosted by Anuj Radia.
26: Saw Calpol Children's Medicine, and there was a little Indian girl on the box. Now, for me, that's a big change in how we're identifying and seeing ourselves. When my parents were shopping in Boots at that time, for me, they would never have seen a little Indian girl on a box.
1: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. This is Leica Radio across the Midlands.

0: मोहम्मद रफ़ी साहब एंड सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में गाया हुआ ये गीत मैंने साज और आवाज़ फिल्म से चुना था, और इस फिल्म के भी प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर थे सुबोध मुखर्जी।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: आपको इंडियन रुपी एक पाउंड के बदले मिलेंगे 129.3, पाकिस्तानी रुपीज 372.99, श्रीलंकन रुपी 461.71, बांग्लादेशी टका 164.51, अफगानी से 84.50.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is LIKA Radio across the Midlands. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
0: गोल्ड का रेट है इस वक्त 108 pounds and 11 pence पर ग्राम।
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. LIKA Radio Network, broadcasting across the Midlands. Score updates. Brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly. Proud to be the official partner of England Cricket.
0: Right, भाई क्रिकेट की बात करें तो अहमदाबाद में आज मैच शुरू बस होने ही वाला है गुजरात टाइटंस एंड चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। चेन्नई सुपर किंग चोज टू फील्ड फर्स्ट, सो आप इंतजार कीजिए, जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे। रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द एफसी। Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.
0: भाई आपको सुबोध मुखर्जी की फिल्मों के कुछ एक गीत मैंने सुनवाए और उम्मीद करती हूँ आपने पसंद भी किए, एंड कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपके साथ शेयर की। हिज फिल्म्स ऑफन फोकस्ड ऑन फैमिली ड्रामा, रोमांस एंड सोशल इश्यूज, रिफ्लेक्टिंग द टेस्ट ऑफ मिड 20th सेंचुरी इंडियन ऑडियंस। जंगली इनकी फिल्म बहुत पॉपुलर हुई थी और स्पेशली उसका याहू वाला गाना भी बहुत पॉपुलर हुआ था। वाइल इंटरनेशनली इतने फेमस नहीं हो पाए थे जैसे कपूर और गुरुदत्त थे, पर सुबोध मुखर्जी की जितनी भी फिल्में थी अच्छी बनी। सम ऑफ हिज वेल नोन मूवीज इंक्लूड लव मैरिज, दुल्हन एंड अभिनेत्री, शर्मीली, शागिर्द। कुछ एक गीत आपने सुने, कुछ नहीं भी सुन पाए तो नेक्स्ट आवर में देखते हैं।
2: Good afternoons with Bali Brahmbhat. Bali Brahmbhat is sponsored by Gemin Foods. Tamara tea time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pearl, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe tamara najikna Asian shops ma.
3: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
4: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
4: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
5: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.

ये गीत हमें न्यूज तक पहुंचाएगा और 3 बजे की खबरों के बाद उस पर हम कुछ एक गीत आदित्य चोपड़ा की फिल्मों के भी सुनवाएंगे। आज अपना बर्थडे मना रहे हैं आदित्य चोपड़ा, सो मेरे साथ रहिए।

वेलकम टू द लास्ट एंड द फाइनल ऑफ आवर ऑफ द प्रोग्राम. और अब इस वक्त आपने दो गाने जो सुने, इस आवर के पहले दो गाने वो आदित्य चोपड़ा की फिल्मों से थे, दिल तो पागल है एंड चांदनी. वेल, आदित्य चोपड़ा इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे. इज एन इंडियन फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड इंडियाज मल्टी नेशनल फिल्म मीडिया एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ यशराज फिल्म्स. आप सभी जानते हैं YRF कितने पॉपुलर हैं. द फिल्म्स ही हैज प्रोड्यूस मेक हिम द हाईएस्ट क्रॉसिंग इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर एट of all time, and he had been denied, this is you know,

0: भी अभी तो मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, ना ही मैं किसी से रूठती हूँ। अगर मेरे लिए ये गाना था तो अपने आप ही अपने नाम कर लिया। हाँ राइट, महेंद्र पटेल जी अभी अभी ज्वाइन किया, लेट क्यों आए हैं? निर्मला जी आपने भी अभी ज्वाइन किया, जैस्मीन सुन रही है, इंतशा, पमी जी, इंसलाव, निर्मला, कीरत जी, विजय गुदरे, मनु जी, जगदीश इनबुशी, प्रकाश सुमैया जी, रमीला पटेल इन हैरो, हरीश रुडा जी, आप सभी का थैंक्स करना चाहूंगी मैं, मिसेस पाके चियांग, विजय गनोवा, रेनू विशिष्ट, शाहिद मलिक साहब, उल्लास टोरंटो में, दिनेश पोपट जी, भारती जी, अर्जुन जी, विभाकर, इंस्टा एंड मोर, हंसा वोरा जी एंड मिसेस शुक्ला, और भी बहुत सारे नाम हैं, अंजलि, भरत गंगाराम जी, अजय जी, जिसका नाम रह गया, आई एम सो सॉरी, मैं नहीं अब ले सकूंगी नाम आपके। बता दूं ये गाना जो आपने सुना ये किसने आप तक पहुंचाया?
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: भाई कहीं जाना चाहती हैं तो मैं जगह बता देती हूँ आपको, और बहुत इंटरेस्टिंग बात है बताना चाहूँगी, पर ये पहले बता दूँ कि ये गीत मैंने अभिलाषा फिल्म से चुना था। लाइका रेडियो नेटवर्क के जरिए ये आवाज़ आप सब तक पहुंच रही है। मैं आपको बताने जा रही हूँ खुशवंत सिंह जी के लिटरेचर फेस्टिवल के बारे में। खुशवंत सिंह लिटरेचर फेस्टिवल बिगेन इन कसौली इंडिया में 15 ईयर्स अगो, और लंदन में पिछले 8 साल से हर साल होता है। खुशवंत सिंह जी लव्ड लंदन, वे ही स्टडीड एंड वर्कड एज वेल, सो विच इज़ वाई देन द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया ही हैज़ इन्वाइटेड दिस फेस्टिवल इन दिस कंट्री। सो इस साल का थीम है रीवाइल्डिंग द माइंड, इकोलॉजी स्टोरी टेलिंग एंड द फ्यूचर। द खुशवंत सिंह लिट फेस्टिवल जो है ये स्टार्ट हो रहा है 30th मे को एट SOAS यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, देन मूव ऑन टू ऑक्सफोर्ड जून 2nd को वहाँ जाएगा एंड इन सटन, और जून 6th को कर्टसी सटन सिटी काउंसिल के। एंड रजिस्ट्रेशन फ्री है बिल्कुल ऑन इवेंट ब्राइट, जो भी जाना चाहे जा सकते हैं। थीम इज रिवाइल्डिंग द माइंड, एंड खुशवंत सिंह जी कितने बड़े लिटरेचर के प्रेमी हुए हैं, कितनी अच्छी अच्छी उन्होंने किताबें लिखी हैं, ये आप सभी जानते हैं। सो ये थी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की। एंड रश्मि जी थैंक यू सो मच फॉर योर लवली व्हाट्सएप मैसेज, आपने चाहा था कि सभी सुनने वालों को बता दिया जाए तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन सब तक चाहती है।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, बता दिए इस वक्त करेंसी का रेट मार्केट में क्या चल रहा है। Right, a pound in your pocket can get you कितने पैसे? Indian rupees 129.17, Pakistani rupees 373.29, Sri Lankan rupees 462.96, Bangladeshi taka 164.76, Afghanis 84.29.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Leica Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: It's 108 pounds and 17 pence per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22-carat gold, white gold jewelry, coins, and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. Leica Radio. This is Leica Radio across the Midlands. India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: Right, we Gujarat Titans aur Chennai Super Kings ke beech mein match shuru ho chuka hai. Ahmedabad mein IPL ka ye 66th match hai. Aur Chennai Super Kings ne choose kiya ki wo field karenge first, to Gujarat Titans ne bana liye 8 overs mein 81 runs aur unka koi khiladi abhi out nahi hua hai.
1: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
2: Leica Radio.
3: Leica Radio.
1: Traffic and travel.
4: As you make the journey around Old Rewards this afternoon, southbound the A38 currently closed. That's because of a bus fire from the Tamworth turn through to Fradley. Fairly busy on routes around Birmingham as well, with the Aston Villa Trophy Parade taking place today. So from the Jewellery Quarter through to Broad Street, just expect some additional time on your journey, certainly with that parade getting underway in about an hour's time. It will mean routes around that area busier than normal. Hinckley traffic busy as well with a partial blockage. That's because of an accident on Watling Street. That stretch of the A5 partially blocked near to Longchute traffic lights. Watch out for the ongoing roadworks at Burton affecting your northbound Derby Road. We've got closures out towards Hawkins Lane. That's the latest.
1: Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is Leica Radio. The Leica Radio Network is now also streaming live on the Nation Player app. Download on iOS and Android mobile devices.
2: Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert is proudly sponsored by Jaimin Foods, your trusted name for dal bhat, pav bhaji, biryani and so much more. Available now at your nearest Asian shops. Jaimin Foods, the authentic taste of India.
0: राइट भी मेरे जाने का वक्त है और जाने से पहले मैं आपको दो गीत और सुनाऊंगी. मेरे बाद आ रहे हैं सैंडी शाह, उनका इंतज़ार कीजिए. माइक्रोफोन की इस तरफ से अब सरिता सबरवाल को इजाज़त दीजिए. कल फिर आपकी सेवा में 1 बजे की खबरों के बाद हाजिर हो जाऊंगी. सैंडी के बाद आएंगी अश्विनी और फिर हमारे यहाँ से गोल्डन नाइट्स होती हैं. गोल्डन नाइट्स में भी बहुत प्यारे प्यारे गीत. सुबह सुबह काजल ब्रेकफास्ट शो लेकर आती हैं, देन रवि शर्मा जी. सो सुनते रहिए प्रोग्राम इसी तरह से. और मेरे बाद दूसरी तरफ आज विश पटनागर हैं जो ही विल बी सिटिंग इन फॉर राजपतन.
3: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर romantic Paris or timeless beauty of Italy K through.
5: Visit mantraholidays.co.uk or call 02037736333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
6: Asiana, in association with ZTV and Leica Radio, brings you the Asiana Lifestyle Show on Sunday the 31st of May at the new Bingley Hall in Birmingham.
7: Where weddings, fashion, jewellery, beauty and lifestyle come to life under one roof.
6: Meet the UK's top brands, discover exclusive offers and get ready to be inspired and entertained in style.
7: Register now for free tickets at asianalifestyleshow.com.
6: For sponsorship and details, call 07803 633 926.

0: Listen to the freshest hits added daily on Lycra Radio. Miss your favourite show on Lycra Radio Midlands? You can now listen back at lycraradio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to lycraradio.com and the Lycra Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Lycra Radio Midlands when you want. Lycra Radio Midlands is a part of the number one Asian commercial network, the Lycra Group, home of Lycra Radio and Lycra Gold.
1: Lycra Radio.
2: CTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
3: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं?
4: खुद से भी ज्यादा।
2: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
4: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
2: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे CTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394।
5: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 साल का भरोसा, हर साल हजारों happy travelers, इसलिए families के लिए Star Tours experience अलग होता है. Visit StarTours.co.uk.

0: लेके एक नई मोहब्बत की दास्तां तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: अमीरा, यहाँ से मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। क्या तुम मेरे साथ? ये फैसला मेरा था, भुगत तुम रही हो। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।
2: अगर हम साथ हैं
1: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे।
3: खुशियों को लगी वक्त की नजर, कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर?
4: ये रिश्ता क्या कहलाता है? मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस, अवेलेबल ऑन स्काई 705, अर्जुन मीडिया 803-EE392 एंड TV, प्रेजेंटेड बाय travelup.com, पावर्ड बाय नेटको फूड्स।
5: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. That's 020-3773-633. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
6: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
7: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win. कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर, यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स। सबके लिए कुछ न कुछ है। 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर। चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116-332-5100। एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में, जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी।
1: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be Breakfast with Kajal, Drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want. Leica Radio Midlands is a part of the number one Asian commercial network, the Leica Group, home of Leica Radio and Leica Gold.
2: Leica Radio.
1: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores.
2: Leica Radio.
1: Pay close attention and name the film of this cracker classic.

0: आज तो ये गाना बनता है ना बॉस, व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रैक, बिग शॉट्स कहना टू शाम, फर्स्ट वन इन विद द राइट आंसर. ऑफ कोर्स इट्स ऑल अबाउट रिमाइंडिंग यू दैट फ्रैंकी गोज टू बॉलीवुड. द स्टेज म्यूजिकल कंटिन्यूज विद इट्स 2026 टूर. टिकट्स अवेलेबल राइट नाउ एट rifcotheatre.com. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स आपका अपना लाइका रेडियो. सो द टूर इन थिएटर रॉयल विंडसर एंड्स दिस सैटरडे, एंड देन फ्रॉम द 26th ऑफ मे दे आर बैक एट द क्वींस थिएटर इन हॉर्नचर्च. 2nd of June for a week they are at the Oxford Playhouse. Wednesday the 10th of June for up to Saturday they are at Birmingham Rep. And then of course 24th of June they'll be ending the tour at the Bristol Old Vic. So pick up your tickets right now and do not miss out.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Your gold is currently trading at £108.41 per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins, and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
0: Is that time, baby? Let's go. Two big checks. We're going back to back.

0: looking.
1: Listen to the freshest hits added daily on Leica Radio.
2: सीटीवी एचडी पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
3: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं?
4: खुद से भी ज्यादा।
2: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
4: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
2: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे सीटीवी एचडी पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, 8394।
1: Bollywood's biggest 90s songs non-stop.
5: Shaadi tujhe se ho meri, chahe shaadi ke din mar jaun.
6: Ye hata saavan ki ghata, hata saavan ki ghata.
1: Listen to Leica Radio 90s on Leica Radio mobile app, leicaradio.com and Alexa. Play Leica Radio 90s. This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire, with the UK's biggest Asian hit. A true Radio Wally Cracker Classic. Name the 90s number. This is Leica.

लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते लाइका रेडियो डॉट कॉम ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी। ये है लाइका गोल्ड।